ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच ले

कट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालो चुप ताई अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

दिलिये खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असी बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता असी बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके मुड

0: कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी जरूर करना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल जी। एक
0: बट
1: मैडम, हाँ जी,
0: हाँ जी, बट अगेन ना अपने च ये चीज़ दी कमी है साडे, मोस्टली जिहड़ा साडा पेंडू तबका है, साडे जिहड़े विलेजेस च रहिंदी यूथ है,
1: हाँ जी,
0: उन्हां नूं ना इस चीज़ दी अवेयरनेस ही नहीं है कि केड़े केड़े सरकारी नौकरियां निकलदियां ने, केड़े केड़े टेस्ट हुंदे ने सरकारी नौकरियां नूं लैण दे लई। ठीक है, तां ओह चीज़ दी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो जरूरी है, जे पता ही
0: हाँ
1: नहीं है
0: जी,
1: तो करेंगे की।
0: हाँ बिल्कुल। तां हुण जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां सब इस दे बिटवीन ही मैं तुहानूं इक साडा जो एक्टिविटी शेयर कीती सीगी कि असीं अपने कैंडिडेट्स दी लिस्ट निकालदे हां और उन्हां नूं अवेयर करदे हां, उन्हां नूं बल्क मैसेजेस दे थ्रू उन्हां नूं अवेयरनेस दिंदे हां कि
1: हाँ
0: ए
1: जी,
0: वाले टेस्ट निकले हुए ने, तुसीं अप्लाई कर सकते हो।
1: अच्छा जी,
0: तां इसी तरीके दे नाल ए चीज दे विच असीं कम कर रहे हां। बट यही है कि साडे कोल जद तक यूथ खुद चल के साडे कोल आके पुछेगी नहीं या उन्हां दे खुद अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होएगा कुछ करन दा, तां उदों तक साडियां जिहड़ियां कोशिशां नहीं कामयाब नहीं हो
1: नहीं हो
0: सकदियां जद तक
1: सकदियाँ।
0: यूथ खुद नहीं मोटिवेट हुंदी कम करन दे लई या
1: बिल्कुल जी,
0: फिर तैयारी करन दे लई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी।
1: बिल्कुल जी। मैडम साहिबाना जी, तुहाडियां गल्लां बड़ियां कीमती ने, जो लगातार सुनते रहना चाहिए है, पर समा जिहड़ा हैगा वो सानू इजाजत नहीं दिंदा कि आपां
0: हाँ जी,
1: होर इन्हां गल्लां नू सुनते रहिए, ये गल्लबात आपां करते रहिए, विचार चर्चा करते रहिए। सो अज दा जिहड़ा समा साडा वो समाप्त हुंदा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं बड़ियां कीमती गल्लां साडे स्रोतियां दे नाल सांझियां कीतियां।
0: जी
1: हुण वेला हो गया प्रोग्राम नूं समाप्त करन दा।
0: हाँ
1: रेडियो दुआबा
0: हाँ जी,
1: ते स्रोतियां दा मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े वधिया तरीके नाल सुणिया, ते उम्मीद करदे हां इन्हां गल्लां नूं सुण के, इन्हां नूं अपना के, ते अपनी जिहड़ी जिंदगी है, अपना भविख है, उहनूं बेहतर बनाउण वल वधोंगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया जी।
0: थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए।

जिंदगी का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी एक

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी।

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी।

गई, जिंद वादियां चे डुब गई, जे समतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं तां जर क्या भी नहीं,

डूब गई, जिंदवा दया चे डूब गई, जे संतरी जांद है ओ डूब जाना, अजे भी वादे करी जांद है। चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

जे डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डुब गई, जिंद वादिया चे डुब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा।